नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा व्यक्त की कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न

क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए मिसाइल हमले करने का दावा किया। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताब सुनाइ रहेछौं समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, समाचार सबिना गिरीबाट सुन्नुहोस्। प्रथममा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज नयाँ दिल्लीमा महिला तथा बाल विकास विभागको दुई दिनको शिखर सम्मेलनको समापन सत्रमा सामेल हुनुहुनेछ। अभिनेता नाना पाटेकरको अन्तिम संस्कार महाराष्ट्रको पुणेस्थित उनको फार्म हाउस नानाजी वाडीमा पूर्ण राजकीय सम्मानको साथ भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी एनटीएले यूजीसी नेट दिसम्बर 2026 सत्रका लागि पञ्जीकरण शुरू गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी अनि आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूमा रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ। अनि क्रिकेटमा भारत अनि वेस्टइन्डिज बीच 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय म्याचको श्रृङ्खलाको दोस्रो म्याच आज राँचीमा खेलिनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज नयाँ दिल्लीमा महिला तथा बाल विकास विभागको दुई दिनको शिखर सम्मेलनको समापन सत्रमा सामेल हुनुहुनेछ। यो सम्मेलन हिजदेखि शुरू भएको हो, जसमा सबै राज्यहरूका राजनीतिक नेतृत्व अनि महिला तथा बाल विकास क्षेत्रसित सम्बन्धित अधिकारीहरूले भाग लिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना अनुरूप आयोजित गरिएको विभागीय शिखर सम्मेलनको श्रृङ्खलामा यो दोस्रो सम्मेलन हो। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा।
1: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनसेवाबाट देश सेवाको मन्त्रको साथ सार्वजनिक जीवनमा 25 वर्ष पूरा गर्नुभएको छ। यो यात्रा निरन्तर जनसेवा अनि राष्ट्रप्रति समर्पणको उदाहरण बनेको छ, जुन आज पनि जारी

0: दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यो जनताको निरन्तर आशीर्वाद जनार्दनको परिणाम हो। मंगलबारको बैठकमा केन्द्रीय क्याबिनेटले सरकार प्रमुखको रूपमा निरन्तर नेतृत्वको 25 वर्ष पूरा गरेकोमा मोदीजीलाई औपचारिक रूपमा बधाई दिएको छ। राष्ट्र पहिलो र नागरिक प्रथम यो सिद्धान्तबाट निर्देशित क्याबिनेटले कल्याणकारी योजनाहरू, पूर्वाधार विस्तार, आर्थिक सुधार र प्रविधिलाई मोदीजीको कार्यकालको परिभाषित विशेषताहरूमध्ये उद्धृत गरियो। यसले लगभग 60 करोड़ जनधन खाताहरू, 4 करोड़ भन्दा बढ़ी घरहरू र 4 लाख करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी पीएम किसान स्थानान्तरणलाई उजागर गर्यो। प्रस्तावमा 25 करोड़ मानिसहरू गरिबीबाट बाहिर निस्किएको सरकारको दावी छ। जीएसटी, डिजिटल भुक्तानी, यूपीआई, कल्याणकारी वितरण सुधार र औपनिवेश युगका कानूनहरूको प्रतिस्थापन प्रमुख नीतिगत परिवर्तनका उदाहरणहरूको रूपमा उद्धृत गरिएको थियो। प्रस्तावमा भारतको कोविड खोपको विकास र चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिकै चन्द्रयान र 3 अवतरणलाई पनि देशको बढ्दो प्राविधिक क्षमताको प्रतीकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदको प्रस्तावमा सन् 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, सन् 2019 बालाकोट हवाई आक्रमण र सन् 2025 अपरेशन सिन्दूरलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई मोदीजीको नेतृत्वका अन्य परिभाषित विषयवस्तुमध्ये स्थान दिएको छ। बैठकमा संविधानको धारा 370 हटाउने, एक श्रेणीको एक पेन्सन चीफ अफ डिफेन्स स्टाफको गठन, माओवादी हिंसा विरूद्धको सरकारको कार्यवाही लगायतका विषयमा चर्चा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तावले G20 र ब्रिक्समा भारतको भूमिका, ग्लोबल साउथका लागि यो वकालत, G20 अफ्रिकी संघको समावेश र खोप मैत्रीलाई औंलाएको छ। मोदीजीले 36 देशबाट राजकीय सम्मान प्राप्त गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
1: हिन्दी अनि अंग्रेजी समाचार।
2: इसे समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने

0: कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना

0: जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में है। TVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
2: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, TCS, विप्रो और SCL के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं और अब आज

0: ये समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल समिट ऑन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली टुडे। गवर्नमेंट कैप्स ट्रेड मार्जिन्स ऑन नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स एट 30% ऑफ एमआरपी। Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes including nutrition, early education, child protection, women's safety and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price or MRP, a report.
4: The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore annually. While essential cancer medicines on the scheduled list are already subject

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता, अब अन्तिम गीत सुनाउन लागिरहेछौ जब वी मेट चलचित्रबाट, शान अनि उस्ताद सुल्तान खानको स्वरमा।

0: बुखार आया है, इसे नजरअंदाज ना करें।
1: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
0: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
1: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा न ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
0: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
1: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की रेजी नगर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की मदुरांतकम सीट पर टीवीके और धारापुरम पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। असम की लोकसभा सीट नगांव पर हुए उपचुनाव की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार आगे है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर गिनती के दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनगयम से 4000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अबीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: 800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY। Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: पीएस लोहार का शब्द, रमा गुंजने आवाज और नम्रता बलको।

0: हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेका छौँ। अब आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार यस केन्द्रबाट रिले गरेर सुनाउनेछौँ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और धारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज

रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, दक्षिण आंध्रे कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सत्यनिष्ठा केवल एक शब्द होइन, यो हाम्रो कार्य संस्कृति को पहिचान हो।
1: हरेक काम में पारदर्शिता, हरेक निर्णय में निष्पक्षता, हरेक पाइला में जवाबदेहिता,
0: यही हो सत्यनिष्ठा, यही हो समृद्धि को बाटो।

जमाल उद्दीन शाह मार्केट भागलपुर सिटीजन मास्टर हुसैन मास्टर डीएन सिंह रोड भागलपुर अफरोज आलम बरकत आलम र सदाव बक्सर बिहार सदरुद्दीन अंसारी फातिमा खातुन असलम अंसारी अक्रम र अल्ताफ अंसारी कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया ओम प्रकाश राय उषा राय अमित राय हैप्पी राय गाजीपुर प्रतीक राय रोशनी र प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर अवधेश राय प्रीति राय र नवनीत नाई मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र अभिजीत गणकर तथा वहां का धीरे धीरे साथी कनहरिया बजार पूर्णिया दिलीप कुमार सेंचुरी विमला रानी सिंपी रानी सुनील नायक अभिषेक नायक तथा वहां का साथी रिग्नी छत्तीसगढ़ दिनेश वर्मा करुणा वर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ मुकेश शर्मा सरितागर शर्मा गौरव र गरिमा शर्मा कुर्सेला तिन्दरियाबाट ललन कुमार सिंह प्रभा देवी कुमार केतु मनीष कुमार गौतम कुमार स्नेहलता कुमारी मीरा कुमारी मधु आजाद पिटू चौधरी नीतू चौधरी अशोक प्रसाद मण्डल र एलके सिंह त स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको अघिल्लो गीत यहाँहरूको अनुरोधमा।

0: The External Affairs Ministry has said that U.S. Department of Labor's decision concerning the Permanent Labor Certification PERM program for certain companies is distinct from the H-1B visa program. The ministry in a statement said the suspension of PERM applications does not by itself affect the validity of existing H-1B visas or the status of H-1B visa holders and their dependents. It added that though there could be some impact on the permanent residency or green card process of eligible employees of the affected companies. Earlier, the Trump administration had announced the suspension of a key employment-based green card process for 8 major technology and outsourcing companies, including Indian firms Infosys, TCS, Wipro, and HCL. The action also covers Cognizant, Capgemini, Microsoft, and Adobe. In cricket, India will take on the West Indies in the second of the 5-match T20 international series in Ranchi today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match, with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory. The India Meteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over South Interior Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Tarun Chavadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies U.S. suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा

0: 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्टोरेंट में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स।
4: भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
3: इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टैंडर्ड सेटिंग टेबल।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम

0: मामले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि

0: कैप्टन मचार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया अनार कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताहरू, हामी आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ लोक तथा आधुनिक गीत।

0: श्रोताले अहिले भर्खरै सुन्नुभयो कुन्ती मोक्तानको स्वरमा यो गीत।
1: लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ,
3: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।

0: श्रोताले यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो लोक तथा आधुनिक गीत।
1: সতর্ক থাকুন, ডেঙ্গি থেকে বাঁচুন।
2: কিভাবে বুঝবো যে ডেঙ্গি হয়েছে?
1: ডেঙ্গিতে জ্বর হয়, সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, গা হাত পায়ে ব্যথা। জ্বর হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করান।
2: বাড়িতে কিভাবে ডেঙ্গির উপশম সম্ভব?
1: বাড়িতেই বিশ্রামে থাকতে হবে, গা মাথা বারবার ভেজাতে হবে। এমনিতে যতটা জল খান তার থেকে দিনে এক লিটার বেশি করে জল ও অন্যান্য তরল খাবেন। জ্বর ও ব্যথার ওষুধ হিসেবে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল খান। অসুখের প্রথম 5 দিন মশারির মধ্যে থাকুন, যাতে মশা কামড়ে ভাইরাস না ছড়ায়। এইভাবে বাড়িতেই ডেঙ্গির চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
0: अब हामी श्रोतालाई सुनाइरहेछौं समाचार।
3: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, समाचार सारण मगरबाट सुन्नुहोस्। प्रथममा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज साँझ नयाँ दिल्लीमा महिला तथा बाल विकास विभागको 2 दिने शिखर सम्मेलनको समापन सत्रमा भाग लिनुहुनेछ। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण आजदेखि अक्टोबर 11 सम्म सिङ्गापुरको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुनेछ। दिल्ली पुलिसले भोलि जन्तर मन्तरमा प्रस्तावित कक्रोच विरोध प्रदर्शनलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। पुडुचेरीको थट्टनचावाडी विधानसभा सीटको उपचुनावमा अल इण्डिया एनआर काङ्ग्रेस उम्मेद्वार अशोक आनन्द विजयी भएका छन्। अनि मौसम विभागले केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी र कराईकालमा भोलिसम्म भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज साँझ नयाँ दिल्लीमा महिला तथा बाल विकास विभागको 2 दिने शिखर सम्मेलनको समापन सत्रमा भाग लिनुहुनेछ। हिज शुरू भएको सम्मेलनमा सबै राज्यका राजनैतिक नेतृत्व र महिला तथा बाल विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन्। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण आजदेखि अक्टोबर 11 सम्म सिङ्गापुरको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुनेछ। यो भ्रमणको उद्देश्य दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु र लगानी बढाउनु हो। भ्रमणका क्रममा वित्त मन्त्रीले सिङ्गापुरको राष्ट्रपति थर्मन सनमुखरत्नम, प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङ र अन्य वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। वार्ता मुख्यतया व्यापार, लगानी, डिजिटल फाइनेन्स, सेमिकन्डक्टर, उन्नत उत्पादन र कौशल विकासमा केन्द्रित हुनेछ। सिङ्गापुर भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआईको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। अप्रेल 2000 मार्च 2026 बीचमा यहाँबाट लगभग 194 अरब 68 करोड अमेरिकी डलरको कुल लगानी आएको। दिल्ली पुलिसले भोलि जन्तर मन्तरमा प्रस्तावित कक्रोच विरोध प्रदर्शनलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। आज बिहान नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसादले जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन वा अन्य कुनै कार्यक्रम गर्न अनुमतिको लागि कम्तीमा 10 दिन अगाडि आवेदन गर्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो।
4: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
3: दिल्ली पुलिसले भोलि नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरमा प्रस्तावित प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै आज राति 9 बजेदेखि 57 मेट्रो स्टेशनहरूको प्रवेश र निकासद्वार बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

0: थियो भने नयाँ पुस्तामा पनि यसको जोखिम बढी हुन्छ। हामीले हृदय रोग के हो त अनि यसको कारणहरू पनि केही जान्ने प्रयास गर्यौँ। अब यसको लक्षणहरू पनि हामी जानौँ।
1: क्या वार्निङ साइन्स है, क्या अर्ली साइन्स है, क्या बहुत जरूरी साइन है एक हार्ट अटैक के, ये आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन साइन इज चेस्ट पेन। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन इज स्वेटिंग। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन इज पटी, कमजोरी। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। देन लाइट हेडेडनेस। कुछ केसेस में हार्ट अटैक के वॉमिटिंग भी होती है।
0: मुटुमा समस्या आउँदा शरीरले केही पूर्व संकेतहरू दिन्छ जो यस प्रकारले रहेको छ। छातीको बीचको भागमा भारीपन वा दुख्नु अथवा छाती थिचिएको जस्तो हुनु, देब्रे हात, कान, गर्दन र बङ्गारमा दुखाइ फैलिनु, सामान्य काम गर्दा पनि सास फेर्न गाह्रो हुनु वा हलुका हिँडाइमा नै स्वाहा स्वाहा हुनु, अत्याधिक पसिना आउनु अनि रिङ्गटा लाग्नु, घुँडा वा घुँडाभन्दा मुनिको भाग सुनिनु पनि हामीले हृदय रोगका लक्षणहरू मान्न सक्छौँ। अब यसबाट बाँच्ने उपायहरू। सचेत र अनुशासित जीवनशैली अपनाउन सके हृदय रोगको जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। अब बाँच्ने प्रमुख उपायहरू यस प्रकारले रहेको छ। सन्तुलित र स्वस्थ खानपान। हरियो सागपात, ताजा फलफुल, गेडगुडी र फाइबरयुक्त खाना नियमित खानुपर्छ। चिल्लो, पिरो र प्याक गरिएका खानेकुराहरू छोडेर नुन र चिनीको मात्रा सीमित गर्नुपर्छ। नियमित व्यायाम। दैनिक कम्तीमा पनि 30 मिनट छिटो छिटो हिँड्ने, पौडी खेल्ने वा योग गर्ने बानीले मुटुलाई सबल अनि बलियो बनाउँछ। धुम्रपान अनि मदपान त्याग्ने। चुरोट, तम्बाकु अनि यस प्रकारको कुरोहरूदेखि हामी एकदमै टाढो बस्छौँ र यिनीहरूलाई सेवन गर्न पूर्ण रूपमा हामीले बन्द गर्यो भने मुटुको सुरक्षाको पहिलो शर्त यही नै रहन्छ। तनाव व्यवस्थापन, ध्यान, मेडिटेसन, योग अनि मनपर्ने रचनात्मक कामहरूमा समय बिताएर मानसिक तनाव कम गर्नुपर्छ। दैनिक 7-8 घन्टाको गहिरो निन्द्रा अति आवश्यक हुन्छ। तौल नियन्त्रण। शरीरको उचाइ अनुसार सही तौल कायम राख्नले मुटुमा प्रत्येक अतिरिक्त भार कम हुन्छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। वर्षमा कम्तीमा पनि एकपटक वा 40 वर्ष काटेपछि नियमित रूपमा रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्रा अथवा सुगर र कोलेस्ट्रोल जाँच गर्न हामी अस्पतालतिर जानुपर्छ। यसले पनि हामीलाई हृदय रोगदेखि बचाउनमा मदद गर्न सक्छ।
2: अब आपको करना क्या है, अगर ऐसा सिम्टम्स हो तो इमिडिएटली जाइए हॉस्पिटल में, 2 टेस्ट जरूर करवाइए, वो पक्का कर देगा आपको हार्ट अटैक है या नहीं है। एक का नाम है ट्रॉप्टी टेस्ट, वो स्लाइड से होता है, 500-600 रुपए की टेस्ट होती है, उसमें 2 बूंद ब्लड डालते हैं, यस और नो बता देगा हार्ट अटैक है कि नहीं है। और दूसरी होती है ECG, अगर ECG में चेंज आ गई है हार्ट अटैक की तो फिर ये कंफर्म्ड हो गया, और उस वक्त आपको हॉस्पिटल अगर ठीक जगह पहुंच गए और जल्दी पहुंच गए तो वो लोग एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो किया जा सकता है, बट वो याद रखिए 1 घंटे के अंदर हो तभी उसका फायदा है। तो आपको अगर पहले से ही पता चल जाए हार्ट अटैक आने वाला है तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। हालांकि हम उतने देर तक वेट करने बोलते नहीं, हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव स्टेप पहले से ही लो। हम लोग देश भर में प्रिवेंटिव हार्ट क्लिनिक्स खोल के रख रहे हैं और वहां पे हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करिए। हार्ट अटैक के पहले जानकारी हो भी गई तो हो सकता है आप अपने को बचा पाओगे या नहीं पाओगे, भरोसा नहीं है। नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाओगे, लाखों रुपया खर्चा भी करोगे, पर अगर प्रिकॉशन इन एडवांस ले लोगे तो हार्ट अटैक होएगा ही नहीं। तो ये बात आपके जानकारी में होनी चाहिए। मैं हर वक्त हार्ट के पेशेंट्स को यही समझाता हूँ, हार्ट अटैक के लिए वेट मत करो, आप इन एडवांस प्रिकॉशन लो। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, अगर आप मोटे हो, अगर आप स्ट्रेस पे जी रहे हो, तो आपको प्रिकॉशंस अभी से लेनी चाहिए। अगर दवाई लेनी है ब्लड प्रेशर की, शुगर की, तो वो भी लीजिए, बट अगर इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन आप हार्ट अटैक में फंसेंगे। आज लाइफस्टाइल बीमारियां हर बीमारी को पीछे करते जा रही है, नंबर 1 बीमारी है इंडिया में। 30% डेथ्स हार्ट अटैक से हो रहे हैं, हार्ट से हो रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हो रही है, तो इनसे आपको बचना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग गाइडेंस करने के लिए सावल में इंडिया में 100 से ज्यादा हार्ट सेंटर्स खोल के रखें, और हम लोग की प्लान है 2000 प्रिवेंटिव हार्ट क्लिनिक खोलें पूरे

0: बेटी पढाओ अभियान सुरु गरेको थियो। पछिल्लो दशकमा यो अभियानले जनआन्दोलनको रूप लिएको छ।
1: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIRNews खर्सिङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब रहल समाचार। दिल्ली पुलिसले भोलि जन्तर मन्तरमा प्रस्तावित कक्रोच जनता पार्टीको विरोध प्रदर्शनलाई अनुमति दिन स्वीकार गरेको छ। आज बिहान नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त पुलिस आयुक्त नपुर प्रसादले जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन वा अन्य कुनै कार्यक्रम गर्न अनुमतिको लागि कम्तीमा 10 दिन अगाडि आवेदन गर्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। नयाँ दिल्ली क्षेत्रमा हाल कानुन र व्यवस्थाको अवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा र यातायात नियमहरूलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय लिएको हो। यस्तै रेल मन्त्रालयले आज दिउँसो 2 बजेपछि आफ्नो गन्तव्यबाट प्रस्थान गर्ने र भोलि बिहान 4 बजेदेखि 2 बजेको बीचमा नयाँ दिल्ली र हजरत निजामुद्दिन रेलवे स्टेसनहरूमा पुग्ने सबै मेल र एक्सप्रेस रेलहरू रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ।
2: 7 तारिख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संचार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले भारतको दूरसञ्चार र डिजिटल क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको र देशले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको बताउनु भएको छ। नयाँ दिल्लीमा आयोजित इन्डिया मोबाइल कङ्ग्रेस एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सिन्धियाले भन्नुभयो, भारत स्वदेशी 4G प्रविधि विकास गर्न विश्वको 5औँ देश बनेको छ। उहाँले भन्नुभयो, 1 GB डाटाको लागत 268 रुपियाँबाट घटेर 8 रुपियाँभन्दा कम भएको छ भने भारतले 2030 5G प्रयोगकर्ताहरूको संख्या 55 करोडबाट 1 अरब पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। श्री सिन्धियाले भन्नुभयो, भारतमा विश्वमा सबैभन्दा छिटो 5G नेटवर्क विस्तार भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, विश्वमा वास्तविक समय डिजिटल भुक्तानी लेनदेनको 49% हिस्सा भारतमा छ भने पछिल्लो दशकमा नेटवर्क विस्तार र कनेक्टिभिटी बढाउन ध्यान केन्द्रित गरिएको छ, जबकि अर्को दशकमा यी नेटवर्कहरूको प्रभावकारी प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। पुदुचेरीको थट्टचावडी विधानसभा सिटको उपचुनावमा अल इन्डिया एनआर कङ्ग्रेस उम्मेद्वार अशोक आनन्द विजयी भएका छन्। यस्तै हालसम्मको रुझानमा तामिलनाडु विधानसभा उपचुनावमा सत्तारूढ टिबिकेले मधुरन्तकम र धारापुरम सिटमा अग्रता लिएको छ भने पश्चिम बङ्गालको नन्दीग्राम तथा रेजी नगरमा भाजपा उम्मेद्वारहरू अघि रहेका छन्। सर्वोच्च न्यायालयले केन्द्र, राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई वाहन दुर्घटना दाबीसित सम्बन्धित 4 डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई 4 हप्ताभित्र एक आपसमा जोड्ने निर्देशन दिएको छ, ताकि नक्कली बिमा दाबीहरू रोक्न र क्षतिपूर्तिको निपटानलाई द्रुत बढाउन।

0: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरो जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी द्वारा पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और स्वयं की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने तथा कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस समेत अन्य स्टेशन शामिल है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। उधर रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वनवेव सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही ऑपरेटरों को सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री गेदियोन तिमोथेवोस हेस्बोन के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरवन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्ले को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए आज नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। भारत और वेस्टइंडीज के

0: बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is

0: एक मंगलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छौ र यसै साथ अब हामी यहाँबाट बिदा पनि चाहन्छौ। नमस्ते।
1: हजुरहरूलाई धन्यवाद छ।
0: हुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
2: आज प्रेमिका, आज हामीसँग थुप्रै श्रोताहरू जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग कति धेरै प्रतिभाहरू,
0: हजुर हजुर, सबैजनाले आफ्नो आफ्नो कलाहरू
2: हामी माझ एउटा हामीले एउटा ठुलो एउटा माध्यम भइरहेको आज हाम्रा श्रोताहरू भित्र मा रहेको प्रतिभा हामी उहाँहरूसँग देखिरहेका
0: छैनौँ,
2: तर उहाँहरूको प्रतिभा भने हामीले यहाँबाट
0: सुन्न पाइरहेका छौँ यो रेडियो मार्फत।
2: कसैले गीत गाइरहेका छन्, कसैले कविता भनिरहेका छन्, कसैले कलाकारको देखेको छ। एउटा फोन कल आइरहेको छ, आउनुहोस्। को हुनुहुन्छ? हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, नमस्ते।
1: नमस्ते, मैं सुजन राय बोल रहा हूँ, बेलकोबा से, जलपाईगुड़ी।
2: कहाँ से बोल रहे?
1: जलपाईगुड़ी बेलकोबा से।
2: हाँ जी जी, वो आपका नाम बोले प्लीज।
1: सुजन राय।
2: सुजन राय, हाँ बोलिए जी, क्या खबर है आपका?
1: हमारा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, आप लोगों का कैसा चल रहा है अभी? कल तो महलाई है।
2: हाँ, तो कब कल रेडियो सुनेंगे ना आकाशवाणी कर सा?
1: नहीं, ये तो हम तो रोज सुनते हैं कि तो ये तो चलता ही रहेगा। कल तो स्पेशल डे है, और कल मेरा जन्मदिन भी है।
2: आपको अग्रिम शुभकामना।
1: थैंक यू सो मच आप लोगों को।
2: हाँ जी, तो इतना अच्छा दिन है कल, आप महादय के दिन आपका जन्मदिन, कितना बढ़िया दिन। देखिए
1: मेरे लिए तो बहुत खुश हूँ।
2: हाँ, बहुत बहुत पिता को अग्रिम शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ आपका जन्मदिन का। आपका दिन मंगलमय हो, आपका सुख शांति स्वस्थ अच्छा रहे, यही हम लोग आकाशवाणी कर सकेंगे आपको शुभकामना देते हैं, मनोकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते
1: हैं।
2: तो आपको अभी परसों से नवरात्रि आरंभ हो रहा है, आपको बड़ा दशहरा का मंगलमय शुभकामना। और आपका तैयारी कैसे चल रही है पूजा का? पूजा का तैयारी कैसे चल रहा है?
1: पूजा का तैयारी तो एकदम
2: बढ़िया चल रहा है। क्या क्या तैयारी की है आपने? क्या क्या तैयारी की है आपने, साझा करेंगे क्या?
1: अभी तो और ये अभी मैंने लिया है, पूजा का तो प्रोग्राम भी होगा, गाने का प्रोग्राम है।
2: जी, तो आपके आप जैसे आज का आपने सुना है कि सभी लोग का कुछ न कुछ सुना रहे।
1: अच्छा, मैं तो कुछ मिमिक्री मतलब करता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप कैसा होगा ये तो आप लोगों के ऊपर।
2: हाँ ठीक ठीक है, कीजिए।
0: क्या आप बताना हाँ चाहते
1: हैं? अच्छा, मैं ऋतिक रोशन का थोड़ा सा मिमिक्री कर सकते हो?
2: सनी देओल का कीजिए, वो उसका एक्टिंग करेंगे ना, डायलॉग बोलेंगे।
0: डायलॉग
2: बोलिए बोलिए।
1: मैं आऊ माँ, कहती है आपकी ना बहुत ही जरूर मिलती है, तो मुझे नहीं सुना मिली। मैंने तो कोई काम नहीं की माँ, मैंने तो कोई काम नहीं की, बस इतने से ही।
0: बहुत अच्छा,
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके पास तो इतना बढ़िया कला छिपा हुआ है। देखिए,
1: कोशिश किया, मतलब रोज कोशिश करता हूँ तो।
2: हाँ हाँ, इतना बढ़िया आपके पास कला छिपा हुई है, आप लिखने मुझे साझा किया। अच्छा, आपको मालूम है कि आप हम लोग का प्रत्येक रविवार को हम लोग का कार्यक्रम पूरा पूरा में जो
0: फोन इन कार्यक्रम,
2: उसके अलावा आज भी हम लोग ने ये नया फोन इन कार्यक्रम शुरू किया
1: है। वो जो कॉलेज आपका जो रविवार को जो प्रोग्राम होता है ना, वो तो मैं नहीं सुन पाता, क्योंकि सुबह को होता है तो काम के वजह से तो नहीं होता है मेरा, तो शाम को मिलता है टाइम। तो आपने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने।
2: कैसे लग रहा है आजकल और हम लोग के साथ जुड़ के, आपको कैसा लग रहा है?
1: एकदम मतलब इतना, और फर्स्ट प्रोग्राम आज ने आप खोला है फोन इन प्रोग्राम शाम को, और बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। मतलब जितना तारीफ करूँ आप लोगों का काम कर जाएगा शायद।
2: धन्यवाद धन्यवाद, आप आकाशवाणी खरसान सुनते रहिए और हम लोग के साथ जोड़ते रहिए, यही हम लोग का चाहना भी है, हम लोग का इच्छा भी है। ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं।

0: यही सभामा को हुनुहुन्छ? म त आइपुगे है। नमस्ते छ है बिरे भाइ, पो हुनु हुँदोरहेछ त।
1: नमस्कार दिदी।
2: ए म पनि छु है कान्छी भाइ दिदी लु। नमस्ते छ है मेरो पनि तपाईँलाई।
0: नमस्ते, मैले त देखिनँ धनमय मैले।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: रवको क्रममा सम प्रसारण गरी सुनिरहेछौ आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रको प्रादेशिक समाचार। र यसको निम्ति केही क्षण प्रतीक्षा साँच्नुहोस् र जोडिरहनुहोस् आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रसित।

0: पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए एक Why आपको फ्रॉड से बचाए
1: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI
0: आपका साइबर रक्षक

0: रवको क्रममा प्रस्तुत छ कार्यक्रम सुरसङ्गम, जसमा यहाँलाई सुनाइरहेछौ रोजी बराइलीको शर्मा आधुनिक गीतहरू। रेसगी सुनौ यो छोटो सन्देश।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।

0: बुखार आया है, इसे नजरअंदाज ना करें।
1: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
0: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
1: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा न ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
0: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
1: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
2: सत्य निष्ठा केवल एक शब्द होइन, यो हाम्रो कार्य संस्कृति को पहिचान हो।
3: हरेक काममा पारदर्शिता, हरेक निर्णयमा निष्पक्षता, हरेक पाइलामा जवाफदेहिता,
2: यही हो सत्य निष्ठा, यही हो समृद्धि को बाटो। किनकि प्रिभेन्टिभ भिजिलेन्स केवल एउटा अभियान होइन,
3: यो हो असल व्यवस्था र असल भविष्य को जिम्मेदारी।
2: सफा सोच, सही काम, सत्य निष्ठा हाम्रो पहिचान। एनटिपीसी रमामसँग सत्य निष्ठा देखि समृद्धि को विश्वास।

0: आफ्नोका लागि आज नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी छिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवाधिकार प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आईसीजेकी न्यायाधीश रहिसकेकी पिल्लै रंगभेदको वातावरणमा हुर्केकी थिइन्। उनले रंगभेद विरोधी अभियानकर्मीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै तथा मानव अधिकार र समानताको प्रवर्धनमा कार्य गरेकी हुन्। क्रिकेटमा भारतले आज राँचीमा वेस्ट इण्डिज विरूद्ध 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलाको दोस्रो खेल खेल्दैछ। वेस्ट इण्डिजले टस जितेर पहिले बोलिङ गरिरहेको छ। खेल भारतीय समयअनुसार साँझ 7 बजे शुरू भएको छ। पहिलो खेलमा भारतले श्रृंखलामा 1-0 अग्रता लिएको छ। गत साता फ्लाई दुबईको विमानमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना टार्न मदत गरेकोमा भारतीय पाइलट क्याप्टन स्मिथ मच्छारले इजरायलको सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान प्राप्त गर्ने भएका छन्। इजरायली राष्ट्रपति आइजेक हर्जोगले क्याप्टन मच्छार स्वस्थ भएपछि उनलाई नागरिक वीरताका लागि राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान गरिने घोषणा गरेका छन्। यूएई का अधिकारीहरू अनुसार उक्त उडानका सह पाइलटले प्रहार गरी क्याप्टन मच्छारमाथि आक्रमण गरेका थिए र 170 भन्दा बढी मानिसहरू सवार विमानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए। घाइते भए तापनि मच्छारले ककपिटको ढोका खोल्न सफल भए, जसका कारण यात्रुहरूले आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिन सके। यस कार्यमा मदत गर्ने 6 जना इजरायली नागरिकहरूलाई पनि उनीहरूको साहसिक कदमका लागि पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। अब अन्त्यमा सुन्नुहोस् यस बुलेटिनका मुख्य समाचार। दिल्ली प्रहरीले भोलि जन्तर मन्तरमा सीजेपीद्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनका लागि अनुमति अस्वीकार गरेको छ। दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन डीएमआरसीले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा सुरक्षा कारणले गर्दा आज राति 9 बजेदेखि भोलिसम्म 57 मेट्रो स्टेशनहरू बन्द रहने जानकारी दिएको छ। रेल मन्त्रालयले बताएको छ, आज दिउँसो 2 बजेपछि आआफ्ना प्रस्थान स्थलबाट छुटेका र बिहान 4 बजेदेखि 2 बजेसम्मको बीचमा नयाँ दिल्ली र हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनहरू आइपुग्ने सबै मेल र एक्सप्रेस रेलगाड़ीहरू रद्द गरिएका छन्। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामन सिंगापुरको औपचारिक भ्रमणमा प्रस्थान गर्नुभएको छ। भारतीय मूलकी दक्षिण अफ्रिकी कानूनविद नवनीतम नवी पिल्लैले शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रवर्धनमा पुर्याएको योगदानका लागि आज नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी छिन्। र क्रिकेटमा भारतले आज राँचीमा वेस्ट इण्डिज विरूद्ध 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलाको दोस्रो
1: खेल। দিল্লির যন্তর মন্তরে আগামীকাল সিজেপি প্রস্তাবিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দিল্লি পুলিশ অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে। নতুন দিল্লি এবং হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশনগামী সমস্ত মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন যেগুলি আজ দুপুর 2টার পর ছেড়েছে এবং আগামীকাল ভোর 4টে থেকে দুপুর 2টার মধ্যে পৌঁছানোর কথা সেই সমস্ত ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে আগামীকাল ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দিল্লি জন্য কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগর 2 বিধানসভা আসনে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন কর্মসূচি সংক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ঘোষণার প্রেক্ষিতে ভারত জানিয়েছে এর ফলে দুদেশের অভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ধাক্কা খাবে। দ্বিতীয় টি-20 ক্রিকেট ম্যাচে ভারত আজ রাঁচিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হয়েছে। আসছে বিস্তারিত খবরে। দিল্লির যন্তর মন্তরে আগামীকাল সিজেপির প্রস্তাবিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দিল্লি পুলিশ অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে। নতুন দিল্লিতে আজ সকালে সাংবাদিকদের দিল্লি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার নূপুর প্রসাদ বলেন, যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে হলে কমপক্ষে 10 দিন আগে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। সিজেপিকে এই বিক্ষোভ আন্দোলনের জন্য আগে অনুমতি দেওয়া হলেও সে সংক্রান্ত নির্দেশিকা তারা মানেনি।
2: 7 তারিখ को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की, वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं हुआ है। हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था पहली तो ये। दूसरी इनके

0: यसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा लगातार तीन राष्ट्रिय जनादेशहरूमा दिगो सार्वजनिक विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। स्वतन्त्र विश्वव्यापी सर्वेक्षणहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विश्वका सबैभन्दा लोकप्रिय लोकतान्त्रिक नेताहरूमा निरन्तर स्थान दिएका छन्। उहाँलाई 30 भन्दा बढी देशहरूको सर्वोच्च नागरिक सम्मानले पनि सम्मानित गरिएको छ। राजनीतिक वंशवादको समर्थन बिना नै प्रधानमन्त्री मोदीको विनम्र सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च निर्वाचित पदमा उदयलाई भारतको लोकतान्त्रिक प्रणालीले प्रदान गर्ने अवसरहरू र सामाजिक गतिशीलताको उदाहरणको रूपमा व्यापक हेरिन्छ। प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकालमा लगभग 25 करोड़ भारतीयहरू बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर निस्किए र मानिसहरूले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, ठूलो स्तरमा पूर्वाधार विकास, कल्याणकारी वितरणमा सुधार र बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगतिको तीव्र विस्तार देखेका छन्। यस अवधिमा भारतले विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाको रूपमा आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाएको छ। अग्रणी अर्थव्यवस्थाहरूसित प्रमुख व्यापार सम्झौताहरू गरेको छ र विकास, प्रविधि, जलवायु कार्य र ग्लोबल साउथका प्राथमिकताहरू लगायत विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा बढी प्रभावशाली आवाजको रूपमा उभिएको छ। आजको यस चर्चा चौतारी कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर हाम्रा श्रोताहरूलाई सरकारको 12 वर्षको कार्यकालमा किसान कल्याणकारी योजनाहरूको सामाजिक कल्याण र किसान कल्याणबारे यति राम्ररी जानकारी राखिदिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद।
1: हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार।
2: कार्यक्रम चर्चा चौतारीपछि अब समप्रसारण गरी सुनिरहेछौं आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांकरे जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य

0: कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि परम कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत

0: मकसद के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
2: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
3: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
4: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर जर्नी,
6: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
5: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
3: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
7: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय

0: नहीं होती बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Nogaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by U.S. regarding permanent labor certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin, Navnetham Navipillai, wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket, second T20 international between India and West Indies underway in Ranchi. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram and East Mednipur district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasi Rani Rath defeated a nearest rival, Congress candidate Milan Pradhan, by a margin of over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakarav Sarkar wrested the seat from the Aam Janata Union Party, or AJUP, securing 1,29,914 votes. He defeated his nearest rival, Ghulam Nabi Azad, son of AJUP chief Humayun Kabir, by a margin of over 75,000 votes. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal Assembly has risen to 209 seats. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes for Thattanam Chowri Assembly constituency by election. The seat was vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. In Tamil Nadu, the ruling Tamilaga Vetri Karagam TVK has won the assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats today. In Madurantakam, TVK candidate

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल की कलम से जब निकलते हैं चाहतों के किस्से, तो वो बातें छपती हैं दिल की गहराइयों में। अरमानों के बादल रचते हैं नित नई इबारत प्रेम की। मन डूबने लगता है एहसासों की गहराइयों में, उमड़ते हैं जज्बातों के सैलाब, और नजर आता है यादों में बस वही चेहरा।

मासूम चाहतों में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहाँ आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पढ़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहाँ समाएंगे। कभी मिलो जो ख्वाबों में तुम, हर वो बात तुम्हें बताएंगे।

जो प्यार की पहली पाती हुए मेरे पैर हवा अब, कभी उड़ती हूँ यहाँ कभी उड़ती हूँ वहाँ, कदमों ने मेरे छू लिया जैसे आसमां। न होश खुद का न खबर जमाने की, कहने लगी सखियाँ मेरी हुई तो उस दीवाने की। इश्क मोहब्बत प्रेम की पींगे खेलने लगी हैं दिल से, अब राज ये छुपाना मुश्किल हुआ है इस दिल से।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिले नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें। ये प्रेम की पाती लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका दिल रहे परेशान मेरा।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात, लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिख तो दिया था सलाम खत में छुपा कर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की ये रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों की उलझने, मिलेंगी आंखों की कोर में छुपी उनके इंतजार की वो रात, न जाने कब आएंगे साजन इस गली, उनके बिना न दिन भले लगे न लगी भली रात।

एतत्कृतं यत् कदलनितयाद्य धर्मदिशादेवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च तात्मदन्या मम तगत्ते अतीवान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांषि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युवलाजि यत्र धावानलो यत्र तराब्धिबन्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्।

विश्वेश्वरी भुवनपरिपासि विश्वम् विश्वात्मीकाधारसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यम् यथा असुरवधादधु नैव यद्य पापानि सर्वजगनाद्य शमयनयाशु उत्पातपाकजनितांशमहोपसर्गान् प्रणतालं प्रसीद त्वदेवि विश्वार्तिहारिणि रैर्यक्यवासिना विद्ये लोकान्।